0: है लाइका रेडियो। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
2: Lester Miller is back
3: and the stage is about to explode. Confirmed artist
2: Lember Hussein Puri, get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Miller vibes.
3: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
3: Arts Council England.
4: Laika Radio. Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Laika Radio.

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

अनाथ अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

0: हाय ये प्यारा वाला मेलोडियस सा गाना पुकारता चला हूँ मैं इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब फ्रॉम द मूवी मेरे सनम. रफी साहब का जवाब ही नहीं.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Deep Raja, making you feel good every weekend breakfast. Achha.

0: अच्छा तो हम चलते हैं. दिस प्यारा वाला गाना फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना. अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस सॉन्ग. सो द सॉन्ग वाज यू नो एवी लिखा गया था. नाउ आनंद बख्शी साहब वाज इज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग एंड वो सोच रहे थे कि क्या गाना बनाया जाए इन दिस सिचुएशन. उनको कुछ लिरिक्स सूझ नहीं रही थी. सो ही सेड चलो यू नो बाद में लिखते हैं. एंड देन व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव सो ही एंड लक्ष्मी कान प्यारेलाल जी had you know just a casual सी conversation थी. So आनंद बख्शी साहब said अच्छा तो हम चलते हैं. And then लक्ष्मी कान प्यारेलाल साहब said लक्ष्मी जी said फिर कब मिलोगे. And then आनंद बख्शी साहब जब तुम कहोगे. So that's how this song was written and it's such a beautiful वाला गाना. ऐसी बहुत सारी फिल्मी बातें मैं आपके साथ करता रहूंगा on your favorite radio station Like a Gold.
1: Like a radio.
2: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Like a Gold and Like a Radio Midlands.

0: बड़े अच्छे लगते हैं. दिस प्यारा वाला गाना फ्रॉम अदर मूवी बालिका वधू इन अदर वोकल्स ऑफ अमित कुमार. अच्छा, डिड यू नो दैट ये वाला गाना अमित कुमार का एक्चुअली फर्स्ट हिट सॉन्ग था एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: ये है बालिका रेडियो. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupees, 307.

0: पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल. वन मोर सॉन्ग दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: आर यू लिसनिंग? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB.

0: इन आंखों की मस्ती के परवाने हजारों हैं. What a lovely song from the movie उमराव जान. Of course, इसमें थी रेखा and this. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. सो रेखा वॉज वाइडली प्रेज्ड फॉर हर एक्टिंग एंड शी वन द 29th फिल्मफेयर नो शी वन द 29th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर दिस मूवी. एंड ऑफ कोर्स खयाम साहब क्या म्यूजिक दिया इन्होंने. ही ऑल्सो वन द 29th फिल्मफेयर अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग एंड आई मीन द एंटायर मूवी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन. यू नो कुछ कुछ एल्बम्स होती हैं जिसके सारे ही गाने बहुत प्यारे होते हैं एंड आई थिंक उमराव जान इज वन सच एल्बम. आई एम वीर इन फॉर दीप राजा ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक गोल्ड लंडन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन एंड वी आर अवेलेबल ऑन 10:35 AM एंड DAB इन ग्रेटर London and worldwide on LaikaGold.com, Alexa and Leica Radio mobile app.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: What an amazing match between England and Norway last night. I mean, England won with 2 goals, and Argentina scored 3 goals against Switzerland. And of course, now the semi-finals are going to be between France and Spain and England and Argentina. Can't wait. And do not forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Hero kadi wapas nahi aaye.
6: Did you hear that?
7: 1995, Punjab. जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे.
8: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
9: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
8: सतलुज on Hindi Z5.
10: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जैसी.

0: Breaker Radio.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
3: आपके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
4: The madness is back, धमाल 4।
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
4: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
7: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाना।
8: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella. Panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
9: Khakra crunch, bhakri munch, chicky sweet, popper beat, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chicky, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods desi cravings available at nearest ethnic grocery stores.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in

0: हाँ बिल्कुल, ये त्रिशूल फिल्म से गाना था लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में, और उससे पहले आपने लता जी और रफी साहब की आवाज में चरस फिल्म का गीत सुना जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। और लीजिए, हमेशा की तरह आज भी दो बैक टू बैक गीतों के साथ द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, और आप सुन रहे हैं अपना आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं, खुश हैं, अच्छी नींद लेकर चुके हैं, क्योंकि कल मौसम रात को खास तौर पर बड़ा ही सुहावना था। थोड़ी ठंडक थी, हालांकि टेम्परेचर सिर्फ 2-3 डिग्री ही कम था, लेकिन फर्क हमें महसूस हो रहा था, है ना? तो कल शाम मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अब मैं चाहती हूँ कि ये टेम्परेचर 20s में ही रहे तो कितना अच्छा है ना। जैसे ही 30s टच करता है या थोड़ा ऊपर पहुंचता है तो गर्मी बढ़ने लगती है, और हमने लगता है इस बार की गर्मी झेल ली है। क्या ख्याल है आपका? इस बार की जो मतलब यूके में जो 1-2 वीक की गर्मी पड़ती है वो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, और हमको आदत नहीं है तो हमें और नहीं चाहिए, है ना? ऐसा आप भी सोचते हैं ना? चलिए हम बात करते रहेंगे, प्रोग्राम को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं, और आपके मैसेजेस पर भी मेरी नजर जरूर जाएगी, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो आज 1 pound आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए, हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो देखिए कल का क्या शानदार मैच था, नॉर्वे को हराकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और अब पता चल गया है कि सेमीफाइनल किन किन के बीच में होने जा रहा है। पहला सेमीफाइनल होगा 14th को फ्रांस और स्पेन के बीच में, और दूसरा सेमीफाइनल होगा इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना के बीच में, जो होगा वेंसडे 15 जुलाई को। तो मैच का हाल जरूर हम डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ, और ये सब आपको मिल सकता है जब आप उन्हें मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk.
3: ये है
2: लाइका रेडियो।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Hero kadi wapas nahi aaye.
6: Did you hear that?
7: 1995, Punjab. Jahan ek taraf police force militancy hatane mein lagi hui thi. वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
8: Get ready for one of the boldest and darkest chapter of India's history.
9: मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह?
8: सतलुज on Hindi Z5.
10: यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया है जसी।
11: आपके सामने एक रेड बटन है।
12: आ, दबा दिया।
6: नहीं दबाना था.
11: The madness is back. धमाल 4.
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
11: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
11: Watch the biggest family entertainer धमाल 4 in cinemas now.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situations में ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता.

जी हाँ, कुछ कुछ होता है 1998 की फिल्म से लिया था ये गाना। और जब ये फिल्म आई थी तो ये डायलॉग तब बहुत हिट हुआ था कि कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। और ये गाना आज भी इतना हिट है कि जब भी कुछ कुछ होता है लोगों को बोलना होता है तो वो बात बोलने की बजाय वो यही कहते हैं, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ये डायलॉग तब भी इतना पॉपुलर था और आज भी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि शाहरुख खान का 90s में चार्म था भाई। उनकी हर फिल्म हिट होती थी और लोग उनके लिए क्रेजी थे, और उनमें से मैं भी एक थी। क्योंकि मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन मेरे साथ अलग है। मेरा ऐसा कोई फेवरेट एक्टर नहीं होता है। मुझे जब जिस एक्टर की फिल्म अच्छी लगती है वो मेरा फेवरेट हो जाता है, और अगर उसकी नेक्स्ट फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो फिर मैं इंतजार करती हूँ कि अगली फिल्म किसकी आएगी और फिर वो मेरा फेवरेट हो जाएगा। तो ऐसा होता रहता है मेरे साथ। लेकिन आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं। एंड शर्फून कहती है कि हम तो सुबह 5 बजे सोए मैच देखकर, आपने सारा का सारा मैच देखा। क्या बात है शर्फून, लकी यू। मैं तो क्या कहते हैं सो गई थी, क्योंकि मुझे तो सुबह ही आना था, और एक दिन पहले भी मैं देर से सोई थी क्योंकि हमारे राम देखने गई थी, तो मैं वैसे भी टायर्ड थी। और अगर मैं कल रात भी जग जाती तो फिर जानते हैं मैं शो कैसे करती, उबासियां ले लेकर। हाँ, मैं ऋतु शर्मा, बहुत नींद आ रही है, ओ माई गॉड कैसे बोलूं। मेरा कुछ अलग ही स्टाइल होता बोलने का। तो मैंने कहा ना ना ना ना, मेरे साथ ही इंतजार करते हैं, उनके साथ में ऐसा जुर्म नहीं कर सकती। इसलिए मैं सो गई, मुझे पता था सुबह रिजल्ट पता चली जाएंगे। और वैसे भी मैं देसी बंदी हूँ, मैं क्रिकेट की ज्यादा फैन हूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इंग्लैंड हमारी टीम सेमीफाइनल में आ गई है। तो जो भी इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल में देखना चाहते हैं या फिर कह रहे हैं कि घर में आने वाला है, कमिंग होम, तो भाई हमारी बेस्ट विशेस उन सभी के साथ है, और सभी को इंतजार है आने वाले मैच का। लेकिन फिलहाल तो मुझे इंतजार है आपके मैसेजेस पर एक नजर डालने का। Feel good track brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. तो आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं। राजेश जी थैंक यू पूछ रहे हैं कि कल आपने मैच देखा या नहीं, तो बस उसका आंसर तो मैं दे ही चुकी हूँ, मैं नहीं देख पाई। संध्या भावसर जी हमारे साथ हैं, टोरंटो से उल्लास जी हैं, निर्मला जी, मानू जी, हमारे शेखर जी कहते हैं इंतजार है आपके सतरंगी प्रोग्राम का। क्या बात है, थैंक यू, लीजिए इंतजार पूरा हुआ। थैंक यू जयंतन मीना जी, मिस्टर नरेंद्र पाठक, थैंक यू अर्जुन जी, महेंद्र जी एंड हमारे हरीश खत्री जी, आपने क्या मैसेज लिखा है मैं आज उसको पढ़ती हूँ। आपने लिखा है माई फेवरेट प्रेजेंटर ऋतु शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू, टेक केयर, सी यू सून ऋतु, लवली, योर शो इज लवली, यू आर वेरी काइंड, ग्रेट। कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे हैं आपने एक ही मैसेज में हरीश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमेशा ही प्यार के साथ साथ देने के लिए। तो जी मृदु जी, रोशनी जी एंड ऑफ कोर्स हमारे भरत गंगाराम जी, सभी को गुड वाली मॉर्निंग। और ये गाना रफी साहब की आवाज में मेरी ओर से आप सबके लिए। ये है Leica Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: रफी साहब की आवाज में आरजू फिल्म का था ये गाना, जिसमें राजेंद्र कुमार और साधना ने काम किया था। और आपको बता दें कि आज राजेंद्र कुमार की पुण्यतिथि है। 12 जुलाई 1991 में जब उनकी एज 71 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और आपको बता दें कि उनकी बर्थडे भी इसी मंथ में आती है, 20th जुलाई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी। और देखिए कल उनके बेटे का जन्मदिन था। तो ये जुलाई का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है फैमिली के लिए, लेकिन सैडली इसी महीने में आज ही के दिन राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, जिन्हें कल हमने यादें में याद किया था, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सो आज ये गीत उनकी फिल्म से हमने उनके सारे फैंस को डेडिकेट किया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और चलिए आपके मैसेजेस मिलते ही जाए हैं। थैंक यू शर्फून जी, आपने लिखा है कि आज मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की 56th वेडिंग एनिवर्सरी है, और आप एक गाना उनको डेडिकेट कर सकते हैं जिनका नाम है रंजन एंड नेविन पटनी। बिल्कुल, अगला गीत उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। और इसके अलावा हरीश रुदा जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, और जितने भी साथी सुन रहे हैं आप सभी के नाम पर जाता है ये अगला गाना।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में जमाने को दिखाना है फिल्म से था ये गाना, और म्यूजिक तो बताने की जरूरत ही नहीं, आरी बर्मन के अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। संध्या भावसर क्या बात है, कहती है ये गाना ऋतु आपके नाम। हाय थैंक यू संध्या, दिल खुश कर दिया। थैंक यू निर्मला जी, दिनेश सॉरी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। विजय गोनोवा जी, शुभ रविवार आपको भी। और हमारे नरेंद्र बागिया जी कहते हैं गुड मॉर्निंग, और आज आपने एक इंग्लिश शायरी हमारे साथ भेजी है, थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन जस्ट फॉर फन मैं जरूर शेयर करूंगी, मजेदार है। आपने लिखा है कि व्हेन यू ब्रीथ यू रेस्पायर, बिल्कुल सही, वावा। व्हेन यू ब्रीथ यू रेस्पायर, वावा क्या बात है। व्हेन यू डोंट ब्रीथ यू एक्सपायर, वावा सुभान अल्लाह, मारी डाला, यानी कि शायरी ने तो मारी डाला, कमाल है। थैंक यू नरेंद्र बागिया जी, हमेशा ही अच्छी बातें, कुछ अच्छी शायरी, कुछ अच्छे जोक्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं। स्वागत है आपका भी इस शो में। और आपको बताती चलूं कि आज राजेंद्र कुमार तो इस दुनिया को छोड़कर गए ही थे, आज एक और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, एक्टर, जिन्होंने कमाल का विलन्स का रोल किया और बाद में कैरेक्टर रोल ऐसे निभाए कि आंखों में आंसू ला दिए। चलिए आप भी बताइए किसकी बात कर रही हूँ। आज के दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर गए थे सैडली। चलिए आपको समय देती हूँ, वरना थोड़ी देर में मैं बताऊंगी कि वो कौन है, और उन्हीं के दो गाने मैं आज आपको सुनवाऊंगी आज के जोड़ी नंबर वन में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: तो हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। दुबई के लिए बहुत ही बढ़िया डील्स चल रही हैं वहां पर, आप उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब होगा एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
2: Stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
5: Lester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
6: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
6: Arts Council England.
7: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
7: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise.

सुरेश पाटकर और राधा पोडवाल की आवाजों में जगजीत सिंह के म्यूजिक पर प्रेम गीत फिल्म से लिया था ये गाना। हमारे दिनेश सॉरी जी कहते हैं मेरा बहुत फेवरेट वाला गाना है, चलिए आपको डेडिकेट किया। एंड ऑफ कोर्स संध्या भाव सर आपको भी ये गीत पसंद है, आपके नाम पर जाता है। एंड समरीन जी आपका मैसेज भी मिल चुका है, जरूर आपकी बेटी को विश करेंगे, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन से ऐसे विलन हैं और कौन से ऐसे विलन हैं जो पहले तो विलन बनकर आए तो लोगों को खूब डराया और बाद में जब कैरेक्टर रोल्स किए तो लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। और अयूब चौहान जी आप हमेशा ही बहुत ही ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं और आज आपने बिल्कुल सही बताया है, ये है नाम उनका प्राण किशन शिकंद। यस, आज प्राण साहब जिन्होंने पहले तो विलन के रोल किए लेकिन बाद में कैरेक्टर रोल्स निभाए, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। आज ही के दिन 12 जुलाई 2013 में जब वो 93 ईयर्स के थे इस दुनिया को छोड़कर चले गए।

0: यानी कि आज राजेंद्र कुमार के साथ साथ प्राण साहब की भी पुण्यतिथि है और इसीलिए आज उनके दो गाने सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर वन में। और वो गाने कौन से होंगे ये आप जानेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So Gold Rate is 98.79 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: This is Leica Radio.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: जम्मू केशी की आवाज में गाए हुए दो सुपरहिट क्लासिक्स के साथ प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हुआ है और इस आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको बताती चलूं कि मैं ऋतु शर्मा हूं आपके साथ इस शो में आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। और आज है 12 जुलाई और इस संडे का दिन, संडे के दिन आप सुनते हैं जोड़ी नंबर वन। और आज की जोड़ी में हम याद करने जा रहे हैं प्राण साहब और मन्ना दा को, यानी कि आज की जोड़ी है प्राण एंड मन्ना डे, क्योंकि प्राण साहब के लिए मन्ना दा ने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो ऐसे दो गाने सुनवाऊंगी जो प्राण साहब पर पिक्चराइज है, जिसमें आवाज मन्ना डे की है, क्योंकि आज प्राण जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 12 जुलाई 2013 में 93 की एज में मुंबई में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित विलन और कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे थे प्राण साहब। दरअसल 12 फरवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है और शुरुआत में वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1940 में एक पंजाबी फिल्म से की थी और ये पंजाबी फिल्म उन्हें कैसे मिली थी, इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगी कि 50s और 60s के दशक में प्राण साहब ने पर्दे पर विलन का ऐसा दौर दिखाया कि असल जिंदगी में उस जमाने में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया। ऐसा खौफ प्राण का था लोगों के अंदर। और प्राण साहब ने भी नहीं, जो प्रकाश मेहरा थे उनकी फिल्म जंजीर के लिए ऐसा यादगार कैरेक्टर निभाया। अमिताभ बच्चन का नाम भी प्रकाश मेहरा को प्राण ने ही सुझाया। और देखिए जंजीर फिल्म जो अमिताभ बच्चन को प्राण साहब के कारण मिली, उसने अमिताभ बच्चन का करियर ही बदल दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। एक फ्लॉप हीरो से उन्हें सुपरस्टार और देखिए बाद में बॉलीवुड का महानायक तक बना दिया। और इस काम की शुरुआत प्राण साहब ने ही की थी। 50s और 60s और 70s के दशक में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि कई फिल्मों के जो हीरोज थे ना, उनसे ज्यादा पैसा प्राण साहब को मिलता था फिल्मों में काम करने के लिए। कहा जाता है कि सिर्फ राजेश खन्ना को ही उनसे ज्यादा फीस मिला करती थी फिल्मों में काम करने के लिए। और राजेश खन्ना के बाद अगर किसी का नंबर था तो वो थे प्राण साहब। और फिल्मों में अपने काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और भारतीय सिनेमा का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में उन्हें उससे भी नवाजा गया। कुछ बातें मैंने उनके बारे में बताई हैं, शुरू करते हैं थोड़ी ही देर में आज की जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज जो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 126.2 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको 127.2 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio. Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कोई मैच नहीं है। कल इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपनी 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस लेना हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से। और ये सब होगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. Leica Radio.
3: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today. The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
4: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
5: Lester Mella is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist
5: H. Dami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
6: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
6: Arts Council England.

0: मन्ना दा की आवाज में प्राण जहां पर पिक्चराइज ये गाना एक सुपरहिट गाना है, यादगार गाना है और इतना पॉपुलर हुआ है कि ये गाना जब भी हम सुनते हैं तो आंखों के सामने प्राण साहब ने जो कैरेक्टर लिया था वो हमारी नजरों के सामने घूमने लगता है। और आज उनकी पुण्यतिथि है इसलिए आज मैंने जोड़ी नंबर वन के दोनों ही गाने उन पर पिक्चराइज चूज किए हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं आपसे बात कर रही थी कि प्राण साहब एक कमाल के एक्टर थे। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। मैं बात कर रही हूँ जंजीर की, लेकिन वो किस्सा सुनाने वाली हूँ जब उन्हें पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिला। और हम सब जानते हैं कि एक्टर वो कभी भी नहीं बनना चाहते थे, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें सिनेमा में खींच कर ले गई। और ये किस्सा है 1939 का, जब प्राण लाहौर एक फोटोग्राफी की दुकान में काम किया करते थे और लाहौर उस समय भारत का ही हिस्सा था। एक शाम को प्राण अपने दोस्तों के साथ लाहौर की एक मशहूर पान की दुकान पर खड़े होकर पान खा रहे थे, तभी वहां पर एक मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली आए और उन्होंने काफी देर तक प्राण साहब को सिर से लेकर पैर तक देखा और घूरते रहे। प्राण साहब को ये बात अजीब सी लगी और तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? वली साहब उनसे बोले कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ यमला जट, और उसमें मुझे बिल्कुल एक तुम्हारे जैसे चेहरे वाले इंसान की ही तलाश है। मुझे लगता है तुम उस रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो, क्या तुम फिल्म में काम करोगे? प्राण साहब उस समय सिर्फ 19 साल के थे और उन्होंने मजाक में कह दिया, हाँ ठीक है कर लूंगा। और वली साहब ने उन्हें अपना कार्ड दे दिया और अगले दिन सुबह 10 बजे स्टूडियो आने को कहा। लेकिन प्राण साहब स्टूडियो नहीं गए, वो इस बात को भूल गए। उन्हें लगा कि ऐसे मजाक में किसी ने कह दिया होगा। और अगले शनिवार को जब प्राण साहब लाहौर के प्लाजा सिनेमा में फिल्म देखने गए तो इत्तेफाक से वहां उन्हें फिर से वही साहब मिल गए और उन्हें देखते साथ ही वो उन पर नाराज हो गए, खरी खोटी सुनाने लगे। बोले, मैंने तुम्हें भरोसे से कार्ड दिया था और तुम्हारे मिलने पर, तुम्हारे हाँ कहने पर मैंने प्रोड्यूसर से कहा था कि किसी और को साइन मत करना, मैंने हीरो ढूंढ लिया है लेकिन तुम तो आए ही नहीं। प्राण साहब ने अपनी गलती मानी और अगले दिन आने का वादा किया, लेकिन इस बार वली मोहम्मद साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने प्राण के घर का एड्रेस भी लिया और अगले दिन ही खुद ही अपनी गाड़ी लेकर उनके घर पहुंचे, गाड़ी में बिठाया, स्टूडियो लेकर आए। और देखिए, इस तरह से पान की दुकान से शुरू हुआ सफर प्राण साहब को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा खलनायक बना गया। बाद में उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के भी रोल किए, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे रोल किए। और इनफैक्ट जो मैं गाना सुनवाने वाली हूँ उसमें वो विलन नहीं है, और ये गाना और इस फिल्म में उनका काम देखकर हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सुनवाती हूँ उपकार फिल्म का वो गाना जो आप सभी का फेवरेट है।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: बहुत ही सुंदर गाना, दिल को छू जाने वाला गाना। प्रीति, आपका भी यही कहना है और मुझे भी इस गाने की एक एक लाइन इतनी पसंद है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, तेरे अपना बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। इस गाने को ध्यान से सुनती हूँ ना जब, तो सच में लगता है कि इंदिवर साहब ने इतने साल पहले कैसे ये जान लिया कि दुनिया में ऐसा ही होता है, और आजकल के ज़माने में तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही होता है। कमाल का गीत जब भी सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस पर मन्ना दा की आवाज़, जो अपने ज़माने के एक मझे हुए सिंगर और उस पर प्राण साहब जैसे एक्टर, ये कमाल का कॉम्बिनेशन। इसलिए सोचा कि आज उनकी बात हो रही है तो ये गाना तो सुनाना बनता ही है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो उस कलाकार से जुड़े होते हैं और जैसे वो कलाकार हमें याद आता है तो वो गाने याद आ जाते हैं। और जैसे ही आज मुझे प्राण साहब के बारे में पता चला तो मुझे यही दो गाने याद आए, तो मैंने सोचा क्यों ना यही दो गाने आज प्रोग्राम में शामिल किए जाए जिन्हें आप सबने बेहद पसंद किया है। और इस दो गानों को बजाकर आज हमने प्राण साहब को श्रद्धांजलि दी है और उनके फैंस को खुश किया है ये गीत सुनवाकर। आपको बता दूं, ये मनोज कुमार की फिल्म थी उपकार, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो आज ये दो गाने बजाकर हमने जोड़ी नंबर वन में प्राण साहब को याद किया, साथ साथ मन्ना डे साहब को भी। और आपको बता दें कि ये समरीन, आपका मैसेज आया था, आपने लिखा है कि मेरी बेटी मीना का कोई मीना का बर्थडे, उसके नाम कोई गाना कर दो। अब मीना नाम सुनते ही मुझे एक ही गाना याद आता है, तो सोचा क्यों ना मीना का गाना मीना के नाम बजा दिया जाए। अब से बस थोड़ी ही दिन में, लेकिन समरीन की बेटी मीना जी, आपको हमारी ओर से ढेरों ढेरों बधाइयां एंड हैप्पी बर्थडे।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार जो लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड है उसका टाइटल है ईस्ट अफ्रीकन एशियंस, और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजोन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
7: ਭੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਨ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
8: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
7: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
10: Radio partner Leica Radio.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
12: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today. Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HartyHanks.com. Harty Hanks. Outdated is out of business. Visit HartyHanks.com today.
2: On this week's Leica Extra podcast episode, we discuss roots and identity with East African Asians.
15: And, you know, also something as important as education, you know, we take for granted because it's a fundamental part of growing up, whereas our parents didn't have that. They built their careers or they got into work what they could. And it was kind of that opening for us that we could do what we want.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. It's summer on the Leica Radio Network.

0: अमिताभ बच्चन पर पिक्चर आए इस किशोर कुमार की आवाज में गाना हमारी आंटी जी को डेडिकेट करते हैं, जो सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम भिजवा रही है। थैंक यू शोभना राय जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू ईलिंग में दिल सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ ढेरों साथी हैं, व्याना मैन सोनी जी हैं, थैंक यू। दिनेश दीनू दत्ता कहते हैं कि जो दोनों गाने आपने मुकेश जी के प्रोग्राम के शुरुआत में सुनवाए, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। चलिए दोनों गीत मैंने आपको डेडिकेट किए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 127.99 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 98.7 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
2: LEICA Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon

0: क्या धुन बनाई है खयाम साहब ने, कमाल का गीत और उस पर लता जी की आवाज लगाती है इस गाने में चार चांद। और उससे पहले किशोर कुमार की आवाज में राजपूत फिल्म का गीत। और मनीषा शाह का कहना है कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है और मनीषा शाह अपने बेटे के साथ ट्रेन में हैं और हमारे राम शो देखने के लिए जा रही हैं। तो मनीषा जरूर आपको बहुत मजा आएगा और आपके बेटा भी बड़ा एक्साइटेड है, तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। और अपने बेटे को अगर कोई वर्ड्स समझ में ना आए तो समझा दीजिएगा, क्योंकि श्री राम ने और रावण ने और रामायण हमारी हिंदी भाषा में लिखी हुई है, तो उसमें ऑब्वियसली हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इतनी खूबसूरती से हर शब्द को कविता में पिरोकर बोला गया है। खास तौर पर श्री राम का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है राहुल भुच्चर, वो जिस तरह से बोल रहे थे और जिनकी आवाज थी, मतलब वो मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब हर शब्द में क्या बात उन्होंने कही है, दिल से वाहवाह निकल रही थी। आई एम श्योर आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे और आज बहुत सारे लोग देखने जाने वाले हैं, क्योंकि आज लास्ट दो शो हैं और उसके बाद तो खत्म ही हो जाए। तो मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, दे ऑल आर सुपर एक्साइटेड और मैं तो देख ही चुकी हूँ, तो मैं तो जो भी खबरें मिलती हैं लोगों से अच्छा लगता है सुनकर। तो जाइए आप भी मज़े करके आइए, फिर अगले हफ्ते आपसे जब मुलाकात होगी तो बताइए कि आपको कैसा लगा। इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं। स्लाव से रानी जी हैं, जैस्मीन हमारे साथ हैं, अर्जुन जी हैं, योगेंद्र जैन हैं, भारती हैं, हंसा वोरा हैं और किशोर लाडवा जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। बेल्जियम से हमारी प्रीति जी हैं और एक हमारे लिसनर हैं जो मुझे कहते हैं कि ऋतु ये जो फिल्म थी प्राण की वो थी जंजीर नॉट जंजीर। अरे क्या अंतर है, जंजीर ही तो है, लेकिन अगर हम तो हमारी हिंदी में वो ज वाला वर्ड नहीं होता तो हम उसे जंजीर ही बोलते हैं। अब सुनने में आपको लगा हो तो मैं कह नहीं सकती, मैं इसी तरह से बोलती हूँ। अभी हो जाता है अलग अलग भाषा में कुछ शब्द, जैसे हमारी हिंदी में मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोग फ वर्ड हैं, लेकिन हिंदी में फ नहीं होता, हिंदी में होता है फा, पी एच होता है, लेकिन सब लोग फल फूल बोलते हैं, फल नहीं होता, होता है फल, पी एच वर्ड होता है हमारी हिंदी में, एफ नहीं होता। तो बोलते हैं लोग बाग, लेकिन आपने मुझे करेक्ट किया है तो मैं जरूर प्रैक्टिस करूंगी अपनी किसी ऐसी सहेली से सीख कर जिन्हें उर्दू अच्छे से आती हो ऐसे हो जाता है, लेकिन थैंक यू आपने मुझे ये बात बताई, मैं इसको ध्यान रखूंगी, क्योंकि मुझे कोई भी किसी बात के लिए बोलता है तो मैं जरूर उसे सीखी कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। और आप मेरा साथ दे रहे हैं तो भैया स्वागत कर ले एक बार फिर से और बता देते हैं कि मुझे ऋतु शर्मा कहते हैं। और इस वाले आवर में मैं आप कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनवाती हूँ और साथ ही साथ हम खेलते हैं अपना थ्री वर्ड्स गेम भी। तो आप सब तैयार हैं? चलिए फिर बताती हूँ आपको आज के तीन वर्ड्स कौन से हैं जिनकी मदद से आप पहचानना है। ये जो गाना है ये मैंने लिया है 1973 की फिल्म से, फिल्म है जिसमें म्यूजिक है और आवाज है लता मंगेश, खुशी। दूसरा वर्ड है जिंदगी, अपनी। कौन सा हो सकता है ये गाना? और तीसरा वर्ड है अपनी, 1973 की फिल्म है ये, मंगेशकर की आवाज है। अगर आपको ये गाना पता है तो देर किस बात की है।
1: WhatsApp Like a Radio Midlands now 793 719. SBI UK Money to send money to India with competitive rates with Yono SBI UK, the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए इस नंबर पर UK mobile app ke through.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: अरे अनिल सोनी जी वियाना में कहते हैं ऋतु जंजीर बन के सीधे चैन बोल दो। ये आइडिया अच्छा है अनिल जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं? अब मैं जंजीर एक बार बोल के चैन बोल दिया करूंगी, मेरे लिए भी आसानी और उन्हें भी आसानी जिन्हें ये सुनकर थोड़ी क्या आपने मुझे हंसा दिया।

0: हेलो फ्लेवर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं बोले हैं। आशा जी की आवाज में, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना लीडर फिल्म से हमने आपको सुनवाया, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। और इस बार कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी ही हैं, और आप सभी ने हेलो बढ़ जाते हैं आगे इस गीत को एंजॉय किया है। तो चलिए सिक्स का पहला गाना,
1: ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली.net।

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
2: क्या खूबसूरत गाना है, म्यूजिक बाय हेमंत कुमार, फिल्म का नाम बिन बादल बरसात, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस गाने को भी लिखा है शकील बदायूनी ने ही, जो है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये गाना डेडिकेट करते हैं बॉबी जी आपको, और आपका मैसेज पढ़कर भी मुझे हंसी आ रही है, और आपने सही लिखा है, थैंक यू, हमेशा ही साथ देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। और हमारा थ्रीवर्स गेम तो चल ही रहा है, आंसर्स मिल चुके हैं, और जिन्होंने सही सही जवाब दिए हैं, चलिए उनके नाम बताई देती हूँ।
3: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो जिनके आंसर सही हैं उनका नाम है कुकी, उषा खोड़ा, उल्लास, दिव्या जी हैरोसे, किरण जी हैरोसे, तोची जी, हाजरा जी, भरत गंगाराम जी, नीलेश तन्ना, नरेन पटेल, शरफून, मनीषा शाह, श्रेया वत्सला जी, करसन पिंडोरिया एंड गीता एंड हर्षद जोशी जी। इन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, और कुछ साथी कह रहे हैं फिर से बता दो थ्रीवर्स गेम। तो मैं सोच रही हूँ अब एक गाने के बाद तो मैं गाना बजाने वाली हूँ, तो अब आप गाना ही सुनना कि वो एक्चुअल गाना कौन सा था। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक और सुनवा दूं ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।
3: दिस इज रितु शर्मा।
5: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।

0: यस, ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, जिसे लिया था मैंने फिल्म गृहस्थी से, और जिसमें अशोक कुमार थे, मनोज कुमार थे, और साथ में थी राजश्री, एंड म्यूजिक बाय पंडित रविशंकर शर्मा।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: तो आपको याद दिला दें कि हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कॉम्पिटिटिव डील्स उनके यहाँ दुबई के लिए आपको मिल सकती हैं। उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: तो अब बस आपको समय आ गया है आज के थ्री वर्स गेम को सुनवाने का, थ्री वर्स गेम वाले गाने को सुनवाने का। सहर जी, आपका गाना भी बिल्कुल सही, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है, और जो गाना था वो मैंने फिल्म अभिमान से लिया है, जो 1973 में आई थी, जिसमें एसडी बर्मन का म्यूजिक था। लेकिन उससे पहले अमर जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। वाओ, आपने लिखा है हर खुशी हो वहां जहां तू जहां भी रहे। थैंक यू सो मच, आपको गीत पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एंड उल्लास, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स अच्छे लगे। तो चलिए सुनवाते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में हमारा आज का थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. ये है Leica Radio.
2: Stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN. Start

0: क्या खूबसूरत गाना है। एसडी बर्मन के म्यूजिक पर लता जी की आवाज में ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर साथियों ने सही सही पहचान लिया है। और संध्या बावसर कहती हैं कि ऋतु, इतना पॉपुलर गाना मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब मैं क्या जानू, अपने दिमाग से पूछो मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है। और आप में से कुछ साथी जो हमारा साथ दे रहे हैं, एक मैसेज आया है, सादिया जी एंड मुजाफर जी कार में हैं और शॉपिंग पर जा रहे हैं, और आपको भी ये गीत डेडिकेट करते हैं। आप आई एम श्योर गीतों को पसंद कर रहे होंगे, और बस यही कहूंगी, हैव ए लवली शॉपिंग। शॉपिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है। कोई दुख तकलीफ परेशानी हो, अगर मुझे शॉपिंग ले जाया जाए तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, चाहे किसी भी चीज की शॉपिंग हो। आई लव शॉपिंग। तो आपसे यही कहूंगी सादिया एंड मुजफ्फर जी, हैव ए लवली शॉपिंग। और जब भी समय हो आपको, हमें जरूर सुनिए, साथ जरूर दीजिए। आज आपने मैसेज भिजवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब तो आपसे विदा लेने का समय आ रहा है, एक गाना और सुनवाऊंगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: ये है Leica Radio.
3: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 पाउंड आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड

0: चलिए इस खूबसूरत गाने को हम वत्सला जी को डेडिकेट करते हैं। आपको ये गाना बड़ा पसंद है और बस यही गाना मेरे साथ आज का आखिरी गीत होगा, नहीं एक और गाना होगा जो लेकर जाएगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार आपका साथ देंगे अनुराग लाइका गोल्ड पर, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर और नीरज होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड पर। लेकिन लेकिन लेकिन मेरी आपकी मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी सैटरडे के दिन। जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे राम देखने गए और आपको कैसा लगा, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और मजे के साथ पूरा हफ्ता बिताइए, लेकिन हाँ मुझे याद जरूर करते रहिए। सैटरडे को फिर से हाजिर हो जाऊंगी ढेर सारे गीत लेकर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगले हफ्ते तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
1: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM Saturdays and Sundays, like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Like a radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of

0: Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus, meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
4: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
6: Punjab di biggest tunes.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: ये है लाइका गोल्ड.

0: गुड आफ्टरनून, आज आप सबका स्वागत करती है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। लाइगर रेडियो नेटवर्क के जरिए हमारी मुलाकात होती है सैटरडे एंड संडे बिटवीन द आवर्स ऑफ 4 and 7। जहां भी बैठे इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं, सरिता चाहती है अपने कान आप मुझे उधार दे दें। जी हाँ, आपके कानों में रस खोलती रहूंगी मीठे मीठे गीतों का। आज के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, दो गीत बैक टू बैक आपने सुन लिए हैं, दोनों गीत बहुत खूबसूरत थे। वेल, मेरी पसंद के गीत थे, तो अक्सर मेरी पसंद आपकी पसंद बन जाती है। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। ये फिल्म 1999 में आई थी, याद है आपको, इसमें अनिल कपूर थे एंड काजोल थी। अनिल कपूर फॉरेन रिटर्न होते हैं, उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। काजल पूरी देसी लड़की होती है, एक छोटे से परिवार की है, एंड अनिल कपूर इज़ वेरी रिच, एंड अनुपम खेर इनके फादर होते हैं। हाल ही में मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे ये गीत याद आया कि कितना प्ले किया करती थी मैं इस गीत को, तो आज मैंने बचा कर रखा हुआ था कि ये गाना आपके साथ शेयर करूँगी। इस फिल्म को सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था और संगीत दिया था इस फिल्म का अन्नू मलिक ने। सो मैं बता रही थी कि ये स्टोरी कैसी थी, तो स्टोरी लाइन अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कह सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वेडिंग के बारे में बता सकते हैं, कि पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को समझना चाहते हैं। क्या आप इस बात में बिलीव करते हैं या नहीं करते मैं नहीं जानती, लेकिन फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। और बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए काजोल का नाम भी नॉमिनेट हुआ था, एंड द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड के लिए भी, एंड द स्क्रीन अवार्ड एंड ऑल्सो जी सिने अवार्ड। सो कितने सारे अवार्ड्स के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था। और क्या इन्हें अवार्ड मिला था ये भी जान लीजिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए यस, सभी के लिए नॉमिनेट हुआ, लेकिन इन्हें अवार्ड मिला नहीं था। सिर्फ काजोल को नहीं बल्कि अन्नू कपूर, अन्नू मलिक जी का नाम भी हुआ था नॉमिनेट, एंड सतीश कौशिक जी का फॉर बेस्ट डायरेक्शन के लिए, जॉनी लीवर का भी हुआ था इस में बेस्ट कॉमिक का रोल के लिए, लेकिन अनिल कपूर जी का नाम नॉमिनेट नहीं हुआ था, दो उनकी एक्टिंग भी बहुत खूबसूरत थी। दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म विजय। विजय फिल्म रिलीज हुई थी 12 अगस्त 1988 में, एंड इस फिल्म को यश चोपड़ा जी ने बनाया था, सचिन भौमिक ने लिखा था इसकी स्टोरी को, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मीनाक्षी सेशौद्री, सोनम, बहुत सारे एक्टर्स थे इस फिल्म में। शिव हरि का था संगीत, और ये गाना भी मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी प्ले भी किया करती थी एक ज़माने में, बहुत ज़्यादा, जब ये फिल्म नई नई आई थी। सुरेश वाडकर और लता जी की आवाज़ें आपने सुनी, एंड शिव हरि, जैसे मैंने कहा, उन्होंने इस गीत को कंपोज किया था, निदा फासली जी ने लिखा था। अब ये दो गीत आपने सुन लिए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माही वर्ड पे सारे गाने होने चाहिए, छुप जा, चांद छुपा, यू नो, छुप गया बदली में जाकर, चांद भी शर्मा गया, आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया, हर एक वर्ड इसका बहुत खूबसूरत है। लेकिन गीत स्टार्ट होता है छुप गए सारे तारे बादलों में, छुप गए वो नज़ारे बादलों में छुप गए, आगे फिर शुरू करते हैं उदित नारायण जी, छुप गया बदली में जाकर, चांद भी शर्मा गया। तो मैंने सोचा एक एक वर्ड लेकर क्यों ना प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्यों, आप क्या सोचते हैं? सो अगला वर्ड क्या होना चाहिए? अगला वर्ड भी छुप पर है, यस, और वो गीत भी बड़ा खूबसूरत है। फिल्म का नाम था दुश्मन, किशोर दा ने गाया था वो गीत। कौन सा गीत है जिसमें छुप वर्ड आता है, CHHUP? कौन सा वो गाना है, आपको याद आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा। अरे अरे अरे अरे, सरिता इतना कुछ कहेगी लेकिन आपसे पूछा नहीं, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय, जिए और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। अब देखिए ना, गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आपके लिए, तो इनके साथ गुनगुनाइए। अगर थिरकना चाहते हैं तो थिरक जाइए, अगर वैसे ही गुनगुनाना नहीं चाहते तो खुल के गाइए, किसने मना नहीं किया है, सो शुरू हो जाइए। पर उससे पहले, अगले गीत से पहले बहुत कुछ और है, क्या क्या?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, एसबीआई यूके के जरिए अगर आप पैसे आज ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 127 rupees and 20 paisas. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टीएनसी अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our radio.
3: Like our radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: राइट भाई, रात का मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया देखा। इंग्लैंड जीत गया और इस जीत पर उन्हें बहुत बहुत बधाई भी। एंड आज है अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल विद स्विट्जरलैंड, सो देखते हैं क्या आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम क्या आता है स्कोर। इस वक्त है 3-1, अर्जेंटीना 3 एंड स्विट्जरलैंड 1।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: भाई, रॉक लॉ वालों का एक मैसेज है कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस फॉर आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस इज सरिता सबरवाल ऑन लाइका रेडियो।
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: आपके सामने एक रेड बटन है,
6: दबा दिया,
5: नहीं दबाना था।
7: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
7: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
7: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
10: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601. Or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
12: Leicester Miller is back.
13: And the stage is about to...

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Radio. Laika Radio. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
2: Aur bhi agla word aa raha hai. Sare. नजारे, यस, छुप गए सारे तारे बादलों में छुप गए, छुप गए सारे नजारे बादलों में छुप गए। गीत आपको पसंद आ रहे हैं ये जानकर बेहद खुशी हो रही है। सुदेश जी, आपने कहा कि कोई भी गाना मेरे हस्बैंड के नाम करते उन्हें उनकी बहुत याद आती है, तो ये गीत आप दोनों के नाम करती हूँ।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is Leica Radio across the Midlands. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: अब जरा तारों की बात हो जाए, लाखों तारे आसमां पर, एक मगर ढूंढे ना मिला। What a beautiful song, हरियाली और रास्ता, इस फिल्म से चुना है मैंने इस गीत को। उम्मीद है आपकी पसंद पर खरा उतरेगा।

क्या बात है, इतना खूबसूरत गीत मुकेश जी की आवाज़ में आपने सुना। और हमारे मिस्टर पाठक वेलिन गार्डन सिटी से लिखते हैं कि रूबी रजा को हेलो कह दें, तो आपकी तरफ से हेलो उन तक पहुंच गई।

0: जाना।
1: अरे भाई कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी यही हूँ और आपका साथ निभाऊंगी टिल 7 o'clock, इसलिए कहीं भी जाने का नहीं।
2: This is like a radio. Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
3: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Hill, Leicester, LE54UN.
5: भरत मंद कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एंड एज सरपंच।
6: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
5: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मिन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
7: हीरो कभी वापस

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मुझे उम्मीद है इन दोनों गीतों को एंजॉय भी किया होगा। वैसे आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं जो इस बात का मुझे यकीन दिला देते हैं कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन रही है। थैंक यू एवर सो मच। प्रोग्राम के इस आवर में हम याद कर रहे हैं राजेंद्र कुमार जी को। राजेंद्र कुमार जी बॉर्न एज राजेंद्र कुमार तुली 20th of July 1927 में उनका जन्म हुआ था और 12 जुलाई 1999 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। स्टार्टेड हिज करियर इन 1949, वर्कड इन मोर देन 80 फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 4 डेकेड्स एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जुबली कुमार ड्यूरिंग द 1960s when he consecutively starred in several commercially successful films. बहुत कुछ उनके बारे में बताने को तो जी चाह रहा है लेकिन देखते हैं कि वक्त कितनी इजाज़त देता है। जो दो गीत आपने सुने, पहला गीत मैंने चुना था फिल्म फूल से और फूल जो थी वो भी फिल्म बहुत खूबसूरत थी एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट वॉज हिज लास्ट फिल्म ही अपियर्ड इन। 1993 में उन्होंने श्रीनिवास रॉय की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी फूल जिसमें कुमार गौरव थी, माधुरी दीक्षित थी एंड सुनील दत्त भी थे एंड राजेंद्र कुमार भी थे एंड ही ऑल्सो प्रोड्यूस दैट फिल्म एंड उस फिल्म में मेरे ख्याल इनका नेगेटिव रोल था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर कमर्शियली ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी। और जो दूसरा गीत था वो मैंने लिया था इन्हीं की फिल्म साजन बिना सुहागन फिल्म से जिसमें नूतन एंड विनोद मेहरा के साथ इन्होंने काम किया था और ये गाना भी इन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था एंड सावन कुमार टक जी ने बनाई थी ये फिल्म। इट वॉज़ ए ड्रामा हिट फिल्म साजन बिना सुहागन और इसका संगीत दिया था उषा खन्ना ने। ऐसे ही बहुत से यादगार गीत हैं जो मैं प्रोग्राम में शामिल करने वाली हूँ इस आवर में। अगर कोई खास आपको गीत पसंद है राजेंद्र कुमार जी पर पिक्चराइज हुआ तो वो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Write your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 20 paise. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNC applies.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah, yeah. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: भई रैक लॉ का मैसेज पहले बता दूं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। और बता दें नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में क्वार्टर फाइनल था एंड जो इंग्लैंड ने जीता यस्टरडे लास्ट नाइट इट वाज इंटरेस्टिंग मैच एंड देन टुडे अर्जेंटीना 3-1 से जीत गए हैं स्विट्जरलैंड से। सो अब अगला मैच जो है वो 14th को होने वाला है। 13th को कोई मैच नहीं है, 14th को होगा फ्रांस और स्पेन के बीच में क्वार्टर फाइनल।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: Right, भी फ्रांस और स्पेन के बीच क्वार्टर फाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल होने वाला है।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today. Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network. Janan. The Janan and J. Dot Summer Sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dot Summer Sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.

0: महेंद्र कपूर साहब एंड लता जी की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना और उम्मीद करती हूँ पसंद भी ज़रूर किया होगा। और इस गीत को हमने चुना था किस फिल्म से, आपको पता चला? धूल का फूल, बहुत प्यारी फिल्म थी और फिल्म में काम किया था इनके साथ माला सिन्हा एंड नंदा थी, शायद साथ में माला सिन्हा एंड नंदा थी। एंड राजेंद्र कुमार मनमोहन किशन जी को भी इस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला था एंड इस फिल्म के लिए माला सिन्हा को भी शायद अवार्ड मिला था। यश चोपड़ा जी ने बनाई थी ये फिल्म जिसकी स्टोरी बहुत खूबसूरत थी। साहिर साहब ने लिखे थे गीत और एन दत्ता का था संगीत।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.

0: मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, HS रवेल साहब ने बनाई थी ये फिल्म, जिसमें काम किया था अशोक कुमार, रजिंद्र कुमार, साधना निम्मी एंड बहुत से और भी कलाकार थे। नौशाद साहब ने संगीत तैयार किया था इस फिल्म का, और इस फिल्म में भी रजिंद्र कुमार साहब की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। 1963 में इस फिल्म को सेकेंड बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी माना गया था, एंड बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए भी बहुत से अवार्ड नॉमिनेट हुए थे। एंड इनफैक्ट बाकी सबके नाम नॉमिनेट हुए थे इस फिल्म के लिए, जॉनी वॉकर, अमिता, निमी एंड शकील साहब का, शकील बदायूनी जी ने जिन्होंने लिखा था गीत, एंड प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम भी, पर अवार्ड किसी को भी नहीं मिला था।
1: Like a extra podcast update.
0: Right, Laika Extra Podcast का 24th episode is out now. East African Asians episode sheds light on the roots and identity and journey of East African Asians. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो Laika Extra Podcast is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: All the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: राइट, मैं जल्दी से आपको दो गानों की चॉइस दे रही हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत छोड़ूं, कौन सा प्ले कर दूं। तो गूंज उठी शहनाई के दो गीत हैं मेरे पास, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, या फिर जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जल्दी से ए और बी, ए इज कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, और दूसरा जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए।
1: दिस इज द Laika रेडियो नेटवर्क, द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द UK, ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com, or you can advertise on the Laika Radio network by emailing sales@laikamedia.co.uk. This is the Laika Radio network across London, Manchester and the Midlands.
2: Kya aap nurse, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: Lester Miller is back.
4: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
3: Confirmed artists include Lember Hussainpuri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
4: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rivko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click rivkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella. Cinderella, panto fun for all the family.
6: Radio partner, Laika Radio.
7: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
8: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
10: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: मेरी मुलाकात हुई थी राजेंद्र कुमार जी से और उनसे मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की थी। दो पार्ट में है वो इंटरव्यू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, सरिता सबरवाल यूट्यूब पर देखिएगा। उन्होंने गूंज उठी शहनाई के बारे में बहुत सी बातें बताई और जो शहनाई इन्होंने बजाए दिखाया था फिल्म में, तो इन्होंने बताया कि मैंने खुद सीखा और खुद से बजाई थी, क्या बात है। और डेडिकेशन, बहुत डेडिकेटेड इंसान थे, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा था। अगर वो इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितने हम्बल पर्सन थे। एंड ही डाइड ओनली फ्यू डेज बिफोर हिज 72nd बर्थडे, 27th ऑफ जुलाई को इनका जन्म दिवस और 12 जुलाई 1999 में इनका देहांत हुआ था। उन अपनी जो काम करके गए हैं उस उनके ज़रिए, उस काम के ज़रिए हम सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। बहुत सी यादगार फिल्में हैं, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन वक्त कहाँ इजाज़त देता है। अभी जल्दी से दो गीतों की और चॉइस दे रही हूँ, बहारो फूल बरसाओ या फिर इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदा। जो कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है, बहारो फूल बरसाओ या इतना है तुमसे प्यार, जो भी गीत पसंद है जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.89, Pakistani rupee 372.67, Sri Lankan rupee 449.75, Bangladeshi taka 164.98, Afghani's 88.44.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's 98.79 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: मोहम्मद रफ़ी साहब एंड आशा जी ने आवाज़ें दी थी इस गीत में अपनी और गीत को यादगार बना दिया। फिल्म का संगीत तैयार किया था रवि जी ने और इस फिल्म के सारे गाने लिखे थे शकील बदायूनी जी ने और बहुत खूबसूरत गाने थे। फिल्म का नाम था गहरा दाग जिसे ओपी रलन साहब ने बनाया था। इस फिल्म में हीरो थे राजेंद्र कुमार जी जिन्हें हमने लास्ट आवर में याद किया एंड हीरोइन थी माला सिन्हा। होप यू लव द सॉन्ग। मैं तह दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं और बड़े प्यार से इतने मैसेजेस लिख रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच। लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप सभी को मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब ज़रूर दिया है। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। अगले गीत में भी आवाज़ आप सुनने जा रहे हैं सुलक्षणा पंडित की। सुलक्षणा पंडित बहुत यंग एज में चले गई और बहुत प्यारी एक्ट्रेस भी थी और बहुत सी फिल्मों में काम किया। उलझन, संकोच, हेरा फेरी, अपनापन, अपनापन में भी इनका काम बहुत पसंद किया गया था। धर्मकांटा में भी एंड शी वॉज वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। और आप सभी जानते हैं कि म्यूजिकल खानदान से हैं, जतिन एंड ललित पंडित इनके दोनों भाई म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे और संगीत इनके खून में था, इन्हें विरासत में मिला। सुलक्षणा पंडित पास्ड अवे ऑन नवंबर 25 में इनकी डेथ होगी एंड बट हर टाइमलेस मेलोडीज और उनकी एक्टिंग के जरिए हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी आज और इसी अवसर पर एक और गीत मैं उनकी आवाज़ में गाया हुआ आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Sulakshana Pandit ji ka saath de rahe hain Mohammad Rafi saab. Film ka naam tha Mahua. Yaad aaya ye geet?

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai like our radio.
3: और भाई अगले गीत के साथ हम याद करने जा रहे हैं प्राण जी को. 12th जुलाई मेक्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्राण कृष्ण सिकंद जी. 1920 में इनका बर्थ हुआ और 2013 में वो सैडली हम सबको छोड़कर चले गए. उन्होंने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया इन 60 ईयर्स एंड 60 साल तक उन्होंने काम किया फिल्मों में. बहुत सी बातें बताऊंगी और लेकिन आइए पहले ज़रा ये गीत सुने जो उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था. कौन सा गीत है ज़रा सुनिएगा.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

अगर आपके घर में भी किसी का बर्थडे है तो ये गीत उनके नाम भी। और अगर आपका बर्थडे है तो मेरी तरफ से बधाई ले लें।

0: प्राण जी ने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कहूंगी ओवर 350 एंड काम माना जाता है 362 फिल्मों में काम किया. ही प्लेड द लीडिंग मैन इन खानदान इन 1942, पीपली साहेब पिलपिली साहेब इन 1954 अगेन एंड हलाकू इन 1956. 1958 में उनके रोल को कौन नहीं जानता है, मधुमती में बहुत प्यारा रोल था उनका, जिस देश में गंगा बहती है इन 1960, शहीद इन 65, राम और श्याम, उपकार में उनका काम बहुत अच्छा था, कस्मे वादे प्यार वफा उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था वो गीत. तो मैंने आज चुना ये वाला गीत, और एक गीत और मैंने क्यों किया है वो भी गीत आप तक पहुंचा रही हूँ. जॉनी मेरा नाम में उनका काम बहुत अच्छा था, विक्टोरिया 203 में, बेईमान, मजबूर, ऐसी बहुत सी यादगार फिल्में हैं और प्राण जी के काम को कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Right, Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410 at all protected.

0: latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
1: ये है लाइका रेडियो। लाइका
2: रेडियो। आपके सामने एक रेड बटन है।
3: दबा दिया।
2: नहीं दबाना था।
4: The madness is back, धमाल 4।
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंद्रा कुमार।
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
4: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आगे कैसे आ जाता हूँ?

0: भाई रुक जाएगी हसीना, रुक जाएगी, जिसे रोकना चाहते हैं वो हसीना थी सायरा बानो इन द फिल्म एंड हीरो थे इस फिल्म के नवीन निश्चल, अशोक कुमार एंड प्राण जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। आप तक पहुंचाया
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स मोर कन्वीनियंस मोर यम, ग्रैब योर कोको बोल टुडे। Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 127.93, पाकिस्तानी रुपीस 372.6, श्रीलंकन रुपी 449.84, बांग्लादेशी टका 165.11, अफगानी 88.85 एंड US डॉलर्स 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: 98.79 का एक ग्राम सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278. Leica Radio.
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

मेरी जाने का वक्त है और सैंडी जी के आने का वक्त है. विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे और उसके बाद हमारे 10 बजे के बाद गोल्ड नाइट्स में ओवरनाइट सर्विस में बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं, उन्हें भी इंजॉय कीजिए. और सैंडी जी का विंटेज गोल्ड की क्या बात करूँ, मज़ेदार प्रोग्राम. एंड देन ब्रेकफास्ट शो लेकर आ रही हैं काजल यहाँ इन द मॉर्निंग, और उनके बाद रवि शर्मा, रवि जी के बाद बाली जी, बाली जी के बाद फिर आएंगे सैंडी, और सैंडी के बाद आएंगी चुलबुली हमारी अश्विनी जी. और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर अब आ रहे हैं महसा जो आपका मनोरंजन करेंगे, और अब तक थी अनिका. एंड रेडियो मैनचेस्टर में आप सुन पाएंगे जैसी को. अब इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. जी हाँ, सैटरडे

फ्राइडे एंड संडे आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से बड़े प्यार से इंतज़ार आपको भी रहेगा तो मुझे भी रहता है इंतज़ार। मेरे सभी साथियों का जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लास्ट गाना प्राण जी पर ही पिक्चराइज हुआ था, आप सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय फॉर नाउ।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: कुछ गाने इस तरह के होते हैं कि सालों बीत जाएं तो भी, यानी उनकी जो एक छनक होती है, एक खनक होती है, वो कभी कम नहीं होती. एंड आई थिंक पुरानी जीन्स अली हैदर का एंड ये दिल दीवाना सोनू निगम on the vocals of this one are two amazing songs which are just so catchy even after years pass on. Your throwback weekend on Laika Radio. Laika Radio. You're tuning into the Sunday Wrap with me, Mesa, on Laika Radio, 14:58 AM in Greater London. DAB Digital Radio across the Midlands, Alexa, Google Home, LaikaRadio.com or Laika Radio mobile app पर आप मुझे सुन रहे हैं. इस शो के स्पॉन्सर्स हैं tickets2india.co.uk, a travel website with some great offers on flights to India and other worldwide destinations as well. Thank you so much guys for all your lovely messages और आपकी company जो है बहुत ही amazing है. Thank you for joining in. I'm surely gonna miss this क्योंकि कुछ जरूरी काम की वजह से I am gonna be off for the next few weeks, but of course कोशिश यही रहेगी that I should be back at the earliest. Until then, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, cause great music will continue at all times on the Laika Radio Network. जैसे इस entire weekend we celebrated nostalgia with throwback numbers from the 70s, 80s, 90s and the 2000s, an era which gave us music that was not just about how it sounded, but how it was felt. And I think it had a kind of emotional honesty and melodic richness जो सुनने के बाद हम बिल्कुल एकदम काम हो जाते हैं, है ना. So let's continue with this magic in this hour as well. But of course, there's something else which needs attention at this moment. So let's see what it is.
1: Catch me if you can with Mesa.
2: Laika Radio.
0: So it is time now for another fun game which is called Catch Me If You Can. Is game me I test your Bollywood lyrical knowledge ki aap apne jo Bollywood gaane hain unhe kitni achhi tarah se jante hain, aap unhe sunte to hain and kabhi kabhi gungunaa bhi lete hain, lekin I want to know ki kya wo words bilkul sahi hain jo aap gungunaa rahe hain. Very simple and very interesting sa challenge. Let's see how many of you can point out कि मैं जो आपको तीन गाने के lines सुनाने वाली हूँ उनमें से किस गाने के lyrics में मैंने गड़बड़ की है. Alright, so पहला गाना है मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम from duplicate. दूसरा गाना है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत from टाइगर जिंदा है. और तीसरा गाना है हर पल यहाँ खुल कर जियो जो है समा कल हो ना हो. आपको ये गाने में गड़बड़ हुई है गाइज, यू हैव टू टेल मी विच वन. आई एम गोना रिपीट द थ्री सॉन्ग्स. पहला गाना है मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम. दूसरा गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. और तीसरा गाना हर पल

0: Like a Radio.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
2: Location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: आपके सामने एक red button है.
5: दबा दिया.
4: नहीं दबाना था.
6: The madness is back. Dhamal 4.
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
6: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4, directed by Indra Kumar. Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits. The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

0: उसके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
1: The madness is back, धमाल 4।
2: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
1: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
3: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
1: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
4: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Like a Radio.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas.
6: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.